बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बांग्लादेश बेतार खुलना सकाल 11:59 शुरू हलो आमादेर आजकेर द्वितीय अधिवेशन अनुष्ठान प्रचारित होच्छे मीडियम वेव 537.63 मीटारे अर्थात 558 किलोहर्ट्ज़े एक ही साथे एफएम बैंड 88.8 मेगाहर्ट्ज़े और बांग्लादेश बेतारेर मोबाइल एप थेके अनुष्ठान घोषणा रयेछे नेवाज हासान अधिवेशन तत्त्वावधाने आसमाउल हुसना प्रकौशल तत्त्वावधाने शेख आबिर होसेन प्रकौशल सहयोगिता रयेछेन मोहम्मद सैफुज्जामान शुरूतेई बांगला संबाद ओ आबहावा ढाका केंद्र थेके रिले करे शोनानो होच्छे।